हम इस तुमसे प्यार कितना के हम नहीं जानते मंगवा टे कुछ आदरे करना दिखे ना मंगवा दाने ना है मैं क्या ना दाने ऐम मैं लाव के टे आदरे निसा अपि किया ना अपिओ में रवाट टे करना किया तब आत वाले लाव के टे अपि हरी मुद्दी पने किया ना आदरे निसा अपिओ हिरी वाट टे करना किया ला ओए मोन्ना मोन्ना देसन मोन्ना मोन्ना वेसन आदरे आवत आदरे दानना අපිට ආත්මීයව ලංවුණු අපිට නොතේරෙන්න අපෙන් අපිව හොරකම් කරගත්ත හරිම කලාතුරකින් කෙනෙක් තමයි අපේ මතකයේ ඇස්සේ අපි තියාගන්නේ මොහොතක් කොහොම නැවතිලා බලයින් අපේ කතාව පටන් ගන්න